0: The Office of the Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Government of India has invited applications for filling up 30 posts of stenographer grade 1 in level 6 as per the 7 CPC pay metrics on deputation basis. The deputation will be governed by the terms and conditions prescribed by the Department of DOPT from time to time. Detailed eligibility criteria, deputation guidelines and application performer is available on the official website. Do visit www.cga.nic.in. National Medical Library under the Directorate General of Health Sciences has invited applications to fill up 5 posts of Assistant Library and Information Officer Group B gazetted Level 7 on deputation or short-term contract basis. Eligible and interested candidates may submit their applications in the prescribed format through proper channel to the Deputy Director, National Medical Library, Ansari Nagar, Ring Road, New Delhi, 110029 within 45 days from the date of publication of the vacancy notice. Detailed eligibility criteria, terms and conditions, and application format is available on the Directorate General of Health Services. Kindly visit the website, that is at www.dghs.gov.in. And do apply within 45 days from the date of publication of the vacancy notice. I repeat the website, that is at www.dghs.gov.in, or you could also go on to www.main.mohfw.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड इन पदों के लिए संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित करता है। ये संविदा वार्षिक आधार पर होगी जिसे 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। पद का नाम है पीजीटी गणित 1 पद, काउंसलर 1 पद, नर्सिंग सहायक 1 पद, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला सहायक 1 पद, पीटीआई सह मैट्रन महिला और पीईएम 2 पद तथा सामान्य कर्मचारी 2 पद। आवेदन करने हेतु पात्रता शर्तें स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं जिसका पता है www.sainikschoolpungalwa.nic.in। ईमेल से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 18 मई 2026 जबकि इंटरव्यू 22 और 23 मई 2026 के बीच किए जाएंगे। सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश में इन पदों की रिक्तियां उपलब्ध हैं। टीजीटी अंग्रेजी अनारक्षित, काउंसलर अनारक्षित, आर्ट मास्टर अनारक्षित और संगीत शिक्षक का पद भी अनारक्षित है। टीजीटी अंग्रेजी का वेतनमान रहेगा 25,000 रूपए से 50,000 रूपए। इसी प्रकार काउंसलर के पद का वेतनमान भी 25,000 से 50,000 रूपए रहेगा जबकि आर्ट मास्टर और संगीत शिक्षक के लिए वेतनमान 20,000 से 25,000 रूपए का रहेगा। यह अनुबंध 1 वर्ष के लिए है जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। होटल प्रबंधन खानपान एवं पोषण संस्थान अहमदाबाद शिक्षण सहयोगी के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनमें से 1 पद सामान्य वर्ग के लिए है जबकि 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। समेकित वेतन रहेगा 25,000 रूपए प्रतिमाह। पूरी जानकारी के लिए देखिए होटल प्रबंधन खानपान और पोषण संस्थान अहमदाबाद की ये वेबसाइट www.ihmahmedabad.com। 200 रूपए का डिमांड ड्राफ्ट प्रधानाचार्य IHM अहमदाबाद के नाम आवेदन के साथ भेजना होगा। ऐसा न होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रहेगी विज्ञापन की तिथि से 21 दिनों के अंदर। सैनिक स्कूल सतारा में। इन रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। टीजीटी गणित 2 पद, टीजीटी हिंदी 2 पद, टीजीटी सामाजिक विज्ञान 1 पद, टीजीटी मराठी कला शिक्षक, संगीत शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान और विद्यालय चिकित्सा अधिकारी, इन सभी पदों के लिए 1-1 रिक्ति उपलब्ध है। जबकि वार्ड बॉय मैट्रन छात्रावास के लिए 3 रिक्तियां उपलब्ध हैं। ये सभी पद अनारक्षित हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जून 2026 तक प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल सतारा, पीओ बॉक्स नंबर 20, सदर बाजार, सतारा, महाराष्ट्र में अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन पत्र और अधिक जानकारी के लिए देखिए स्कूल की वेबसाइट www.sainiksatara.org। अर्नेट इंडिया इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। वरिष्ठ प्रबंधक समूह का 1 पद, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी समूह का 1 पद, तकनीकी सहायक समूह ख 1 पद और निजी सहायक समूह ख 1 पद। पात्रता मानदंड, आवेदन पत्र और अन्य विवरणों के बारे में पूरी जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट ernet.in। कोई भी संशोधन परिवर्तन आदि अर्नेट वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं।
2: हाय हेलो, मीर विंटनारु मिट्स कम्युनिटी रेडियो 90.8 జవహర్లాల్ నెహ్రూ సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయం JNTEAకి అనుబంధంగా ఇన్నాళ్లు స్వయం పాలిత అటానమస్ స్థితిలో ఉన్న మదనపల్లె ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ MITS ఇప్పుడు మరొక విశిష్టతను సాధించింది. మిట్స్ను భారత ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీ గ్రాంట్ కమిషన్ UGC డీమ్ టు బి యూనివర్సిటీగా గుర్తించింది. ఇది విద్యారంగంలో మిట్స్ సాధించిన గొప్ప విజయానికి నిదర్శనం. ఇది మదనపల్లె ప్రాంతానికే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్కే గర్వకారణం. విద్యా ప్రమాణాల్లో అగ్రగామిగా నిలుస్తున్న మిట్స్కు ఈ అత్యున్నత విద్యా పురస్కారం అభినందనీయం. మిట్స్ డీమ్ టు బి యూనివర్సిటీ, ఇది ఉన్నత విజ్ఞాన మార్గంలో ముందడుగు. వినండి, వినిపించండి, ఉంటేనండి, ఆనందించండి. మిట్స్ కమ్యూనిటీ రేడియో 90.8.

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I'm Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with ICAR, National Bureau of Plant Genetic Resources, has invited applications for two positions of young professionals under the AICRN on potential crops project. The engagement is purely temporary up to 30th September 2026 with a consolidated salary of 30,000 rupees per month. Candidates with a graduate degree in science, commerce or computers and knowledge in IT applications, MS Office and virtual meeting platforms are eligible to apply. The walk-in interview will be held on 18th May 2026 at ICAR NBPGR New Delhi. For details, kindly go on to the website, that is at www.nbpgr.org.in. The Engineering Department Chandigarh Administration has invited applications for one post of Executive Engineer Horticulture on deputation basis from officers of central or state governments, public sector undertakings, semi-government, autonomous or statutory organizations. The post carries pay level 11. The deputation period will initially be for 1 year, extendable up to 3 years. Eligible and willing officers may submit their applications through proper channel within 60 days from the date of publication in the Employment News. Detailed eligibility criteria, prescribed format and related documents are available on the official website, that is at www.chandigarh.gov.in. National Institute of Design, Madhya Pradesh, an institution of national importance under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, has invited offline applications for faculty positions including Principal Designer Professor and Senior Faculty Designer Associate Professor on direct recruitment basis. The posts are in pay levels 13 and 12 as per the 7 CPC. Eligible candidates possessing postgraduate qualifications in design along with relevant experience may apply. Detailed advertisements, specialization requirements, eligibility criteria and application forms are available on official website, that is www.nidmp.ac.in/careers. The last date for receipt of hard copies of applications through registered or speed post is 1st June 2026. The Office of the Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Government of India has invited applications for filling up 30 posts of stenographer grade 1 in level 6 as per the 7 CPC pay metrics on deputation basis. The deputation will be governed by the terms and conditions prescribed by the Department of DOPT from time to time. Detailed eligibility criteria, deputation guidelines and application performer is available on the official website. Do visit www.cga.nic.in. National Medical Library under the Directorate General of Health Sciences has invited applications to fill up 5 posts of Assistant Library and Information Officer Group B Gazetted Level 7 on deputation or short-term contract basis. Eligible and interested candidates may submit their applications in the prescribed format through proper channel to the Deputy Director, National Medical Library, Ansari Nagar, Ring Road, New Delhi, 110029 within 45 days from the date of publication of the vacancy notice. Detailed eligibility criteria, terms and conditions, and application format is available on the Directorate General of Health Services. Kindly visit the website, that is at www.dghs.gov.in. And do apply within 45 days from the date of publication of the vacancy notice. I repeat the website, that is at www.dghs.gov.in, or you could also go on to www.main.mohfw.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड इन पदों के लिए संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित करता है। ये संविदा वार्षिक आधार पर होगी जिसे 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। पद का नाम है पीजीटी गणित 1 पद, काउंसलर 1 पद, नर्सिंग सहायक 1 पद, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला सहायक 1 पद, पीटीआई सह मैट्रन महिला और पीईएम 2 पद तथा सामान्य कर्मचारी 2 पद। आवेदन करने हेतु पात्रता शर्तें स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं जिसका पता है www.sainikschoolpungalwa.nic.in। ईमेल से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 18 मई 2026 जबकि इंटरव्यू 22 और 23 मई 2026 के बीच किए जाएंगे। सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश में इन पदों की रिक्तियां उपलब्ध हैं। टीजीटी अंग्रेजी अनारक्षित, काउंसलर अनारक्षित, आर्ट मास्टर अनारक्षित और संगीत शिक्षक का पद भी अनारक्षित है। टीजीटी अंग्रेजी का वेतनमान रहेगा 25,000 रूपए से 50,000 रूपए। इसी प्रकार काउंसलर के पद का वेतनमान भी 25,000 से 50,000 रूपए रहेगा जबकि आर्ट मास्टर और संगीत शिक्षक के लिए वेतनमान 20,000 से 25,000 रूपए का रहेगा। यह अनुबंध 1 वर्ष के लिए है जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। होटल प्रबंधन खानपान एवं पोषण संस्थान अहमदाबाद शिक्षण सहयोगी के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनमें से 1 पद सामान्य वर्ग के लिए है जबकि 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। समेकित वेतन रहेगा 25,000 रूपए प्रतिमाह। पूरी जानकारी के लिए देखिए होटल प्रबंधन खानपान और पोषण संस्थान अहमदाबाद की ये वेबसाइट www.ihmahmedabad.com। 200 रूपए का डिमांड ड्राफ्ट प्रधानाचार्य IHM अहमदाबाद के नाम आवेदन के साथ भेजना होगा। ऐसा न होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रहेगी विज्ञापन की तिथि से 21 दिनों के अंदर। सैनिक स्कूल सतारा में इन रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। टीजीटी गणित 2 पद, टीजीटी हिंदी 2 पद, टीजीटी सामाजिक विज्ञान 1 पद, टीजीटी मराठी कला शिक्षक, संगीत शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान और विद्यालय चिकित्सा अधिकारी, इन सभी पदों के लिए 1-1 रिक्ति उपलब्ध है जबकि वार्ड बॉय मैट्रन छात्रावास के लिए 3 रिक्तियां उपलब्ध है। ये सभी पद अनारक्षित हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जून 2026 तक प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल सतारा पीओ बॉक्स नंबर 20 सदर बाजार सतारा महाराष्ट्र में अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन पत्र और अधिक जानकारी के लिए देखिए स्कूल की वेबसाइट www.sainiksatara.org। अननेट इंडिया इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। वरिष्ठ प्रबंधक समूह का 1 पद, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी समूह का 1 पद, तकनीकी सहायक समूह ख 1 पद और निजी सहायक समूह ख 1 पद। पात्रता मानदंड, आवेदन पत्र और अन्य विवरणों के बारे में पूरी जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट ernet.in। कोई भी संशोधन परिवर्तन आदि अर्नेट वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं।
2: हाय हेलो, मीर विंटनर मिट्स कम्युनिटी रेडियो 90.8 जवाहरलाल नेहरू सांकेतिक విశ్వవిద్యాలయం JNTEAకి అనుబంధంగా ఇన్నాళ్ళు స్వయం పాలిత అటానమస్ స్థితిలో ఉన్న మదనపల్లె ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ MITS ఇప్పుడు మరొక విశిష్టత సాధించింది. మిట్స్ను భారత ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీ గ్రాంట్ కమిషన్ UGC డీమ్ టు బి యూనివర్సిటీగా గుర్తించింది. ఇది విద్యారంగంలో మిట్స్ సాధించిన గొప్ప విజయానికి నిదర్శనం. ఇది మదనపల్లె ప్రాంతానికే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్కే గర్వకారణం. విద్యా ప్రమాణాల్లో అగ్రగామిగా నిలుస్తున్న మిట్స్కు ఈ అత్యున్నత విద్యా పురస్కారం అభినందనీయం. మిట్స్ డీమ్ టు బి యూనివర్సిటీ, ఇది ఉన్నత విజ్ఞాన మార్గంలో ముందడుగు. వినండి, వినిపించండి, ఉంటేనే ఉండండి, ఆనందించండి. మిట్స్ కమ్యూనిటీ రేడియో 90.8.

मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। इस वर्ष बारिश की अच्छी शुरुआत हुई है। हमारे किसान भाइयों बहनों को खरीफ की बुआई करने में अवश्य मदद मिलेगी। और एक खुशी की बात मेरे ध्यान में आई और मुझे बड़ा आनंद हुआ। हमारे देश में दलहन की और तिलहन की, पल्सिस की और ऑयल सीड्स की बहुत कमी रहती है। गरीब को दलहन चाहिए खाने के लिए, सब्जी वगैरह में थोड़ा तेल भी चाहिए। मेरे लिए खुशी की बात है कि इस बार जो बुवाई हुई है उसमें दलहन में करीब करीब 50% वृद्धि हुई है और तिलहन में करीब करीब 33% वृद्धि हुई है। मैं किसान भाई बहनों को इसलिए सविशेष बधाई देता हूँ, उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, 26 जुलाई हमारे देश के इतिहास में कारगिल विजय दिवस के रूप में अंकित है। देश के किसान का नाता जमीन से जितना है उतना ही देश के जवान का भी है। कारगिल युद्ध में हमारा एक एक जवान 100-100 दुश्मनों पर भारी पड़ा, अपने प्राणों की परवाह न करके दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम करने वाले उन वीर सैनिकों को शत शत नमन करता हूँ। करगिल का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा गया, भारत के हर शहर हर गांव में इस युद्ध में योगदान था। ये युद्ध उन माताओं और बहनों ने लड़ा जिनका जवान बेटा या भाई करगिल में दुश्मनों से लड़ रहा था, उन बेटियों ने लड़ा जिनके हाथों से अभी पीहर की मेहंदी नहीं उतरी थी, पिता ने लड़ा जो अपने जवान बेटों को देखकर खुद को जवान महसूस करता था, और उस बेटे ने लड़ा जिसने अभी अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना भी नहीं सीखा था। इनके बलिदान के कारण ही आज भारत दुनिया में सर उठाकर बात कर पाता है, और इसलिए आज कारगिल विजय दिवस पर इन सभी हमारे सेनानियों को मेरा शत शत प्रणाम। 26 जुलाई एक और दृष्टि से भी मैं जरा महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद कुछ ही महीनों में 26 जुलाई को हमने माई गॉव को प्रारंभ किया था। लोकतंत्र में जनभागीदारी बढ़ाने का हमारा संकल्प, जन जन को विकास के कार्य में जोड़ना, और मुझे आज एक साल के बाद ये कहते हुए खुशी है करीब 2 करोड़ लोगों ने माई गॉव को देखा, करीब करीब 5.5 लाख लोगों ने कमेंट्स किए, और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि 50,000 से ज्यादा लोगों ने पीएमओ एप्लीकेशन पर सुझाव दिए, उन्होंने समय निकाला, माइंड अप्लाई किया, इस काम को महत्वपूर्ण माना। और कैसे महत्वपूर्ण सुझाव आए, कानपुर से अखिलेश वाजपेयी जी ने एक अच्छा सुझाव भेजा था कि विकलांग व्यक्तियों को रेलवे के अंदर IRCTC वेबसाइट के माध्यम से कोटा वाला टिकट क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। अगर विकलांग को भी टिकट पाने के लिए वही कठिनाइयां झेलनी पड़े, कितना उचित है। अब यूं तो बात छोटी है, लेकिन न कभी सरकार में किसी को ये ध्यान आया, न कभी इस पर सोचा गया, लेकिन भाई अखिलेश वाजपेयी के सुझाव पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया और आज हमारे विकलांग भाइयों बहनों के लिए इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। आज जो लोगो बनते हैं, टैगलाइन बनते हैं, कार्यक्रम की रचना होती है, पॉलिसी बनती है, माई गॉव पर बहुत ही सकारात्मक सुझाव आते हैं। शासन व्यवस्था में एक नई फ्रेश एयर का अनुभव होता है, एक नई चेतना का अनुभव होता है। इन दिनों मुझे माई गॉव पर ये भी सुझाव आने लगे हैं कि मुझे 15 अगस्त को क्या बोलना चाहिए। चेन्नई से सुचित्रा राघवचारी, उन्होंने काफ़ी कुछ सुझाव भेजे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बोलिए, क्लीन गंगा पर बोलिए, स्वच्छ भारत पर बोलिए, लेकिन इससे मुझे एक विचार आया, क्या इस बार 15 अगस्त को मुझे क्या बोलना चाहिए। क्या आप मुझे सुझाव भेज सकते हैं, माई गॉव पर भेज सकते हैं, आकाशवाणी पर चिट्ठी लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में चिट्ठी लिख सकते हैं। देखें,
मैं मानता हूं शायद ये अच्छा विचार है कि 15 अगस्त के मेरे भाषण को जनता जनार्दन से सुझाव लिए जाए। मुझे विश्वास है कि आप जरूर अच्छे सुझाव भेजेंगे। एक बात की ओर मैं अपनी चिंता जताना चाहता हूं, मैं कोई उपदेश देना नहीं चाहता हूं और न ही मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार या स्थानीय स्वराज के संस्थाओं की इकाइयों की जिम्मेवारियों से बचने का रास्ता खोज रहा हूं। अभी 2 दिन पहले मैंने दिल्ली के एक दुर्घटना के दृश्य पर मेरी नज़र पड़ी और दुर्घटना के बाद वो स्कूटर चालक 10 मिनट तक तड़पता रहा, उसे कोई मदद नहीं मिली। वैसे भी मैंने देखा है कि मुझे कई लोग लगातार इस बात में लिखते रहते हैं कि आप रोड सेफ्टी पर कुछ बोलिए, लोगों को सचेत कीजिए। बेंगलुरु के होशाकोटे अक्षय हो, पुणे के अमय जोशी हो, कर्नाटक के मूरबिद्री के प्रसन्ना काकुंजे हो, इन सब ने, यानी काफ़ी लोगों के हैं नाम, मैं सबके नाम तो नहीं बता रहा हूँ, इस विषय पर चिंता जताई है और कहा है। आप सबकी चिंता सही है और जब आंकड़ों की तरफ देखते हैं तो हृदय हिल जाता है। हमारे देश में हर मिनट एक दुर्घटना होती है। दुर्घटना के कारण, रोड एक्सीडेंट के कारण हर 4 मिनट में एक मृत्यु होती है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये भी है, करीब करीब 1/3 मरने वालों में 15 से 25 साल की उम्र के नौजवान होते हैं और एक मृत्यु पूरे परिवार को हिला देता है। शासन को तो जो काम करने चाहिए वो करने ही चाहिए, लेकिन मैं माँ बाप से गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को, चाहे 2-व्हीलर चलाते हो या 4-व्हीलर चलाते हो, सेफ्टी की जितनी बातें हैं उस पर जरूर ध्यान देने का माहौल परिवार में भी बनाना चाहिए। कभी कभी हम ऑटो रिक्शा पर देखते हैं पीछे लिखा होता है पापा जल्दी घर आ जाना, और पढ़ते हैं तो कितना टची लगता है। और इसलिए मैं कहता हूँ, ये बात सही है कि सरकार ने इस दिशा में काफ़ी नए इनिशिएटिव लिए हैं, रोड सेफ्टी के लिए, चाहे एजुकेशन का मामला हो, रोड की रचना का इंजीनियरिंग हो, कानून को एनफोर्स करने की बात हो, या एक्सीडेंट के बाद घायल लोगों के इमरजेंसी केयर की बात हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल हम लाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी और रोड सेफ्टी एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करने की दिशा में भी हम कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं। एक और प्रोजेक्ट हम लिए हैं, आगे चल के इसका विस्तार भी होने वाला है, कैशलेस ट्रीटमेंट। गुड़गांव, जयपुर और वडोदरा, वहाँ से लेकर के मुंबई, रांची, रड़गांव, मौलिया राजमार्गों के लिए हम एक कैशलेस ट्रीटमेंट, और उसका अर्थ है कि पहले 50 घंटे पैसे है कि नहीं, पैसे कौन देगा कौन नहीं देगा, इन सारी चिंता छोड़ करके एक बार रोड एक्सीडेंट में जो घायल है उसको उत्तम से उत्तम सेवा कैसे मिले, सारवार कैसे मिले, उसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। देश भर में हादसों के संबंध में जानकारी देने के लिए टोल फ्री 1033 नंबर, एम्बुलेंस की व्यवस्था, ये सारी बातें, लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सीडेंट के बाद की है। एक्सीडेंट न हो इसके लिए तो हम सब ने सचमुच में, एक एक जान बहुत प्यारी होती है, एक एक जीवन बहुत प्यारा होता है, उस रूप में उसको देखने की आवश्यकता है। कभी कभी मैं कहता हूँ कर्मचारी कर्मयोगी बने। पिछले दिनों कुछ घटनाएं मेरे ध्यान में आई, मुझे अच्छा लगा कि मैं आपसे बात करूँ। कभी कभार नौकरी करते करते इंसान थक जाता है, और कुछ सालों के बाद तो ठीक है, तनख्वाह मिल जाता है, काम कर लेंगे, यही भाव होता है। लेकिन मुझे पिछले दिनों रेलवे के कर्मचारी के विषय में जानकारी मिली। नागपुर डिवीजन में विजय बिस्वाल करके टीटी है, अब उनको पेंटिंग का शौक है, अब वो कहीं पर भी जाके पेंटिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रेलवे को ही अपना आराध्य माना और वे रेलवे में नौकरी करते हैं और रेलवे के ही संबंधित भिन्न भिन्न दृश्यों का पेंटिंग करते रहते हैं। उनको एक आनंद भी मिलता है और उस काम के अंदर इतनी रुचि बढ़ जाती है। मुझे बड़ा ये उदाहरण देखकर अच्छा लगा कि अपने काम में भी कैसे प्राण तत्व लाया जा सकता है, अपनी रुचि, अपनी कला, अपनी क्षमता को अपने कार्य के साथ कैसे
जोड़ा जा सकता है, ये विजय विश्वाल ने बताया है। हो सकता है अब विजय विश्वाल की पेंटिंग की चर्चा आने वाले दिनों में जरूर होगी। और भी मेरे ध्यान में एक बात आई, मध्य प्रदेश के हरदा जिले के सरकारी अधिकारियों की पूरी टीम, पूरी टोली ने एक ऐसा काम शुरू किया जो मेरे मन को छू गया और मुझे बहुत पसंद है उनका ये काम। उन्होंने शुरू किया ऑपरेशन मलयुद्ध। अभी कोई उसका सुनते ही उनको लगेगा कुछ और ही बात होगी, लेकिन मूल बात यह है कि उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को एक नया मोड़ दिया है और उन्होंने पूरे जिले में एक अभियान चलाया है ब्रदर नंबर वन, यानी वो सबसे उत्तम भाई जो अपनी बहन को रक्षाबंधन पर एक टॉयलेट भेंट करे। और उन्होंने बीड़ा उठाया है कि ऐसे सभी भाइयों को प्रेरित करके उनकी बहनों को टॉयलेट देंगे और पूरे जिले में खुले में कहीं माताओं बहनों को शौच न जाना पड़े, ये काम रक्षाबंधन के पर्व पर वो कर रहे हैं। देखिए रक्षाबंधन का अर्थ कैसा बदल गया। मैं हरदा जिले के सरकारी अधिकारियों की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी एक समाचार मेरे कान पे आए थे, कभी कभी मुझे छोटी छोटी चीजें बहुत मेरे मन को आनंद देती है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में केशला करके एक छोटा सा गांव है, उस गांव के लोगों ने पिछले कुछ महीनों से कोशिश करके टॉयलेट बनाने का अभियान चलाया और अब उस गांव में किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच नहीं जाना पड़ता है। ये तो उन्होंने किया, लेकिन जब पूरा काम पूरा हुआ तो पूरे गांव ने जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है वैसा उत्सव मनाया। गांव ने यह सिद्धि प्राप्त की, केशला गांव समस्त ने मिलकर के एक बहुत बड़ा आनंद उत्सव मनाया। समाज जीवन में मूल्य कैसे बदल रहे हैं, जनमन कैसे बदल रहा है और देश का नागरिक देश को कैसे आगे ले जा रहा है, इसके ये उत्तम उदाहरण मेरे सामने आ रहे हैं। मुझे भावेश डेका गुवाहाटी से लिख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के सवालों के संबंध में। वैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग एक्टिव भी बहुत हैं, वो काफी कुछ लिखते रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं आज खुशी से उनको कहना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनी हुई है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब एक डोनर मिनिस्ट्री बनी थी, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे डोनर डिपार्टमेंट में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि क्या नॉर्थ ईस्ट का भला दिल्ली में बैठ करके हो जाएगा क्या, और सबने मिलकर के तय किया कि भारत सरकार के अधिकारियों की टीम नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में जाएगी, नागालैंड हो, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, असम हो, सिक्किम हो, और 7 दिन वहाँ कैंप करेंगे, जिलों में जाएंगे, गांवों में जाएंगे, वहाँ के स्थानीय सरकार के अधिकारियों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से बातें करेंगे, नागरिकों से बातें करेंगे, समस्याओं को सुनेंगे, समस्याओं का समाधान करने की दिशा में भारत सरकार को जो करना है उसको भी करेंगे। ये प्रयास आने वाले दिनों में बहुत अच्छे परिणाम लाएगा और जो अधिकारी जाकर के आते हैं उनको भी लगता है कि इतना सुंदर प्रदेश, इतने अच्छे लोग, अब इस इलाके को विकसित करके ही रहना है, उनकी समस्याओं का समाधान करके ही रहना है, इस संकल्प के साथ लौटते हैं। तो दिल्ली आने के बाद भी अब उनको वहां की समस्याओं को समझना भी बहुत सरल हो गया है। तो एक अच्छा प्रयास, दिल्ली से दूर दूर पूरब तक जाने का प्रयास, जो मैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी कह रहा हूं ना, यही तो एक्ट है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब इस बात के लिए गर्व करते हैं कि मार्स मिशन की सफलता का हमें आनंद होता है। अभी पिछले दिनों भारत ने पीएसएलवी C-28 ने यूके के 5 सैटेलाइट लॉन्च किए। भारत ने अब तक लॉन्च किए हुए ये सबसे ज्यादा हैवी वेट सैटेलाइट लॉन्च किए। ये खबर ऐसी होती है कि कुछ पल के लिए आती है चली जाती है तो हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन कभी कभी ये भी विचार आता है, आज हम युवा पीढ़ी से अगर बात करते हैं और उनको पूछें कि आप आगे क्या बनना चाहते हो, तो 100 में से बड़ी मुश्किल से एकाध कोई स्टूडेंट मिल जाएगा जो ये कहेगा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। साइंस के प्रति रुझान कम होना ये बहुत चिंता का विषय है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक प्रकार से विकास का DNA है। हमारी नई पीढ़ी साइंटिस्ट बनने के सपने देखें, रिसर्च इनोवेशन में रुचि लें, उनको प्रोत्साहन मिले, उनकी क्षमताओं को जाना जाए, एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने
एक राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया है। हमारे राष्ट्र के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम जी ने इसका आरंभ किया है। इस अभियान के तहत IIT, NIT, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी एक मेंटर के तौर पर जहाँ जहाँ इस प्रकार की संभावनाएं हैं वहाँ उन बालकों को प्रोत्साहित करना, उनको मार्गदर्शन करना, उनको मदद करना, उस पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। मैं तो सरकार के IAS अफसरों को भी कहता रहता हूँ कि आप इतना पढ़ लिख करके आगे बढ़े हो तो आप भी तो कभी सप्ताह में 2-4 घंटे अपने नज़दीक के किसी स्कूल कॉलेज में जा करके बच्चों से ज़रूर बात कीजिए। आपका जो अनुभव है, आपकी शक्ति है, वो ज़रूर इन नई पीढ़ी को काम आएगी। हमने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि हमारे देश के गांवों को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। काम कठिन है लेकिन करना है। हमने इसका शुभारंभ कर दिया है और आने वाले वर्षों में हम गांव को 24 घंटे बिजली प्राप्त हो, गांव के बच्चों को भी परीक्षा के दिनों में पढ़ना हो तो बिजली की तकलीफ ना हो, गांव में भी छोटे मोटे उद्योग लगाने हो तो बिजली प्राप्त हो। आज तो मोबाइल चार्ज करना हो तो भी दूसरे गांव जाना पड़ता है। जो लाभ शहरों को मिलता है वो गांव को मिलना चाहिए, गरीब के घर तक जाना चाहिए। और इसीलिए हमने प्रारंभ किया है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति कार्यक्रम। मैं जानता हूँ इतना बड़ा देश, लाखों गांव, दूर दूर तक पहुँचना है, घर घर पहुँचना है, लेकिन गरीब के लिए ही तो दौड़ना है। हम इसको करेंगे, आरम्भ कर दिया है, जरूर करेंगे। आज मन की बात में भांति भांति की बातें करने का मन कर गया। एक प्रकार से हमारे देश में अगस्त महीना, सितंबर महीना त्योहारों का अवसर रहता है, ढेर सारे त्यौहार रहते हैं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त के लिए आप जरूर मुझे सुझाव भेजिए, आपके विचार मेरे बहुत काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।